करो बेनंती सुनो मेरे मीठा संत टहल की बेला ईहा खाट चलो हर लाहा आगै बसन सुहेला औद घटै दिन सरै नारी मन गुरमिल का सवारी रहाओ यो संसार बेकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावै यो रस कथ कथा तिन जान।

तुमरि शरण पुरख भगवान सर्वैकुंठ मुक्त मोह पाई। एक निमख हर गुण गाय अनकराज भोग बढ़ियाई। हर के नाम की कथा मन पाई। व भोजन का

नान का भी फिर जाय बृहस्पति जब अकार्य काश न दृष्टि ताव वाप पुन तब कहती उत जब तारी अपन सुन संवाद तब बैर विरोध केस संकुमात जब इसका वरण चिहन न जावत तब हर शोक किस व्यापत जब अपन आप अपार ब्रह्मता मुख कह किस बुत परमापन खेरा वर्ती जा नान करने आ न दूजा जब होत प्राप्त केवल तनिता बंद मुक्त कह किस को गण जा भी कह हर कम अपार तब नरक स्वर्ग कह कौन या अवतार जब नरक पर सहज सुभाय तब सब सकत कह कित जब आप अपने जो तरह

लिखा सौनाथ निरंजन गोचरा का दिताकुटिकन बंधन पदयापना भाभीचर जानन का रूपाभि पर निर्मल पुरुख पुरुख पात होता दह बिन वैड कहु क्यात होता जह निरंजन निरंकार निर्वाण दह कौन कौमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश दह शाल क्षेत्र लगत काहु कीस जह ज्योत स्वरूप जो संग समाव तह के सब भूख कौन द्रवताव कर्ण करावन करण आनन कर दिका नह सुमार जब अपने स्वभाव संग बनाई तब कवन वायु बाय मित्र सुत पाई जह सर्व कला आप है परवीन तह वेद देव कह गुचीन जब अपना पुआवरतार तव सगन अब सगन कह विचार जह अपन उचा अपना अवनीरा दह कौन ठाकुर कौन कह अचीरा विषम विषम रह विषम नानक अपनी का जान हुआ जह छाले छेद भेद समाया ऊह कसह व्यापत माया ऊह कसह व्यापत माया अब सकवाप आदि स देह गुण का नाह प्रवी स जह एक ही एक भगवंता तह कौन चिंत किस लागे चिंता जह अपना पूरा पति यार तह कौन कथा कौन सुनने हर बहु व्यंत उजते उचा नानक अब सकवाप है पा उचा जह अप्रचय प्रपंच अकार तेहु गुण मह किन व्यवस्था रूपा पुन तह पई कहावत को नर को सर्वंशावदाल जान माया जंजाल होम मैं मुह परम पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की व्याख्यान अपन ही लाभ कर दिखा खेल संकोचा तम नानक का जह अवगत उपागत तह आप जह पसरा पास हर संत प्रताप दुह पह कया पह तनि उनकी शोभा नु बनी आप कवत करे अनंत चू जा पर भुग निर्जोग जह पावत सपन लाव जह पावत खेल खिलाव सुमार था गणत अतुला ज्यों बुलाव क्यों नानदा बुला श्लोक जी जंत के ठाकुर आप वरत नार नानक को पसरे दूजा कह दृष्टा राष्ट्रपति आप कथा सुनने हर आप ही का विस्तार जंत पावत सृष्ट हो पाया अपना पाण ले सुमाई तुम दे भिन्न नहीं किशो अपन सूत सब जगत पुरे जाको प्रभु जी आप जय सजना सुजन पाए सु समर सीता कविता नानक सब श्रेष्ठ का जीता जी जंत्र सवता का हाथ दीन दयाल अनाथ पुनः जस रखत कोई नाम वाले सो मुआ जिस मन विसर दहता जबर कहाँ को जाए सब श्री निरंजन राई जी की जुग जाग सब हाथ अंतर बाहर जन सात गुण दान भी अंत उपाय नानक दास तबर हर पूरन पूरे दयाल सब प्रभु कृपाल अपनी करत बजाने आप अंदर जम रहे ब्या प्रत पाले जी पात जो जो रचो सो तिहत्यात जिस पावत लय मिलाय भगत करि हर के गुण गाई माने अंतर विश्वास कर मान्या कर नानक जाने जन जान लाका हरि कहना दसिया संभिरथि जाय सेवका सेवा बनाय हुकुम बूझ परम पद पाई हिति ऊपर नहीं विचार जा कमन वस्या निरंकार बंधन तोर पय निर्भय रंधन पूजा गुरु के पैरे लोग सुखी है परलोक सोहिरे नानक हर प्रव्याप मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गाव प्राप परमानंद राम नाम तात करह विचार दुर्लभ देह का करह उदार अमृत वचनार के गुण गाव प्राण तरण का है स्वाव आठ पहर प्राप्ति खम निरा मिटा ज्ञान बिन सा अंधेरा सम दे हर दब साव मन छे नान हर पाव हर बल दुली हो स्वा राम नाम अंतर और तार पूरे गुर की पूरी दीखिया जहन बसा तो साज परीखिया मंत्र नाम जप लि बुलाए दुख दर्द मन ते पाव जाई साच वा उपार करह वा पार दरगह निभा की तुम्हारी कटिक रख मन वाह नानक बह मैं आवे जाही कहते दूर कहाँ को जाए उपराय रख नर त्या निरुपा हो जब सकल पाव मिटा प्रभु कृपा तो प्राणी छोटा जब प्रभु राख तह ना दुख नाम जब मन उत सुख चिंता जाय मिटे अहंकार तेह जन को कुए ना पहुँच नार से रूप रे ठाटा गुरु सूरा नानक ता कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाग दृष्ट दर्शन पीखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हार रूप दान सेवा सेवक प्रभानंतर जन पर प्रदान जय मन बसा सोतने हाल तक निकट नावत काल अमर पाई अमरा पद पाया सा संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधिर विनाश हर कृपा दे संत पेटिया नानक मन प्रगाश अष्टपति संत संग अंतर प्रभु डीठा नाम प्रभु कला गंभीठा सगल समय गरी रस कटमाय हन करंग नन दृष्टा ही नव निध अमृत प्रभु का नाम देहि मैस कब सराम सुन सुमाद अनहत तहनाद कहना जाय अचरज विस्मा तेंदी कज सब दिखाई नानक तेह जन सोजी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत काट काट व्याप रह भगवंत तरन माहि आकाश पाय आर सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल दान तेन पर्वत है पार ब्रह्म जय सिया गत कर्म पावन पाण बंत्र माहि चार कुंट तह दिह समाहि दिह बिन को ठाकुर प्रसाद नानक पाय वेद प्राण समृत मदीख शशि अर सूर नख यात्र एक बाणी प्रभु सब बोलया डोल न कभ डोलै
ਸਰਬ ਕਲਾਕਾਰ ਕੀਲੇ ਕੀਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਪਾਈ ਆਗੁਣ ਹੈ ਅਮੁਗਲ ਸਰਬ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਗੀ ਜੋਤ ਉਧਾਰ ਹਿਉ ਸਵਾਮੀ ਉਤ ਪੋਤ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਕਨਾਸ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਹਿ ਹੁਬੇ ਸਾ ਸਭ ਸੰਤ ਜਨਕ ਅਭਿਖ ਸਭ ਰਾਮ ਸੰਤ ਜਨਕ ਹਿਰਦਾ ਸਭ ਧਰਮ ਸੰਤ ਜਨ ਸੁਨ ਸੋ ਵਚਨ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਦਸਗੀ ਹਰੈ ਤੋ ਸਤ ਵਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਸੁਖਮਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉ ਨਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਪਿਓ ਹਿ ਨਾਨਕ ਦਰਸਨ ਦੇ ਸਾ ਮੋਹੀ ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਸਭ ਸਾਤ ਤਿਹ ਪ੍ਰਭ ਸਕਦੀ ਉਤ ਪਾਤ ਤਿਹ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤਿਹ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕ ਅੰਕਾਰ ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਇ ਜਿਹ ਪਾਵ ਤਿਹ ਲੈ ਮਿਲਾਈ ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਆ ਦੂਰਾ ਪਿਆ ਪੂਆ ਪਾਰ ਪੂਰੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜੇ ਸਭ ਜਨਾਇ ਨਾਨਕ ਜਨਾ ਬੋਜਾਇ ਸਰਭੂਤਾ ਵਰਤਾਰ ਸਰਬਨੈਨ ਆਪੀ ਖਨਾਰਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਰ ਤਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨਾਇਆ ਪੰਜਾ ਨੇ ਕੀਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰ ਕਿ ਨੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਕਮਾਇਆ ਦਲਿਪ ਤੋ ਰਹਿ ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੀ ਕਹਿ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਗਿਆ ਜਾਈ

द्रमान है, निदान है, दर्भर्ग है, असर्ग है, अनीर है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, पंज है, चूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, तंद है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजांग प्रयादिशांद नमो सर्वा ने समस्ते निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे नृसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकंग बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जो योगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जो योगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेश्व धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह नमो भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंदौ सर्वं परणाशी अनूपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृहदकर्ता अदो उर्ध अर्धंग अघंग ओघर्ता परम परम परम वेशुं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदीय भेदीय नाम अकामं समस्त पराजि समस्तस्तताम तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपी हैं प्रभु हैं अजू हैं अधीश हैं अपीस हैं पुजंग प्रयाद शांद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्वाने समस्त निदाने नमस्तु नरनाथे नमस्तु ब्रह्माथे नमस्तु अगंजे नमस्तु अपंजे नमस्तु अकाले नमस्तु अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्व

चक्र बकर फिरा चत्र चक मन ही प्रतीन। लोग चौदह हैं के बिखै जग जा पई जेह जाप आदि देवानाद मूर्त थाप्यो सभ्य जेह थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचियो स्वयं भव गण भंजन हार। कालहीन करा संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपीश अंग राग नरंग जा कह जात पादन नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम। आव रूप अमिक अनुस्तद एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपांग अनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वतयन पीख सर्वशास्त्र न जान ही जय रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाकत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवही बहु चेत मद पार शांत प्रसाद।

सदिश अदृश अकृश भगवती शांतु तव प्रसाद कथते के अशिर देशय के अभिज भेषय के अगंज करमय के अभंज भरमय के अभिज लोकय के अदित शोकय के अवधूत वर्णय के विभूत करणय के राजिंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के अशोक वर्णय के सर्वा अपर्णय के जगतंग ग्रीति है के क्षत्रंग क्षत्रिय है के भ्रमंग स्वरूपय के अनुभाव अनुपय के आद अदेव हैं के आप अपीव हैं के चित्रंग विहीन है के एक कै अधीन है के रोजी रजा कह रही में रेहा कह के पाक बे अव हैं के गैबुल गैव हैं के अफुल गुनाह हैं के शाह हन शाह है के कारण कुनंद कुनिंद हैं के रोजी देहंद हैं के राजग्रहीम हैं के कर्मंग करीम हैं के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वत्र मान्य हैं के सर्वत्र दान्य हैं के सर्वत्र गहन हैं के सर्वत्र पावन हैं के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज्य है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीमय के परमं फहीमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशु सलामय सलिक तुम उदामय गरीब सिकस्त है गरीबुल परस्त है बलंदर मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमामय रुजुहल निदान है हरीफुल अजीमय रजाय की यकीन है अनेक उतरंग है भेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गरीबुल खराज है निरुक्त स्वरूप है धर्मुगत विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आदरूप अनाथ स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्घ त्रिबाध्ये अगंजे अगाध्ये शुभम सर्वभाग्ये सर्व अनुराग्ये सुसर्वानुराग त्रिपुग स्वरूप है अशिज है अशूत है के नरक प्रणाश है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रवाह है अनुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाजरी छंदो अभंग है अनंग है अपेख है लेख है भ्रम है कर्म है अनाद है जुगाद है अजय है वय है भूत है तूत है नाश है उदास है तंध है बंध है भगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है लेख है अदिख है अलेख है अपेख है अटाह है अगह है संभ है गंब है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपुर शांत प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल शांतु त्वे प्रसादम नव नरकनाशे सदा प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते ब्रह्मादं ब्रह्माते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे।

आप हाथ द मुझ उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुर्यु करियो रक्षा, राख लेहु मोहे राखन हारे साहिब।

काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आदंत का अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सगल प्रजा जन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सुतरन को प्रभु बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जान। जबुद करख रा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जवया करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मृत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार।

कहूँ सबर पयो शंकरे कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाय चंपाऊ आजुगा स्वरूप स्वयं पवन आव रक्षा मेरी तुम करो सिख बार असुख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सगर मलेश करो रणकाता जे अस तुता सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुवै मरे पुरुख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा होय ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाय निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कारम सब होई दुष्ट शाह श्वेस।

जग माता ग्रंथ करा पूरन सुभराता किलबिक सगल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अस्तुज जपहि दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न तिसै ब्यापत कोई अड़ेल सुन गुंग जो यह सुरसना।

जित जड़ाओ। शिव सगता उपाय कै करता आपे हुक्म वरता ए हुक्म वरता आप वेखै गुरमुख किसै बुझा ए तोड़े बंधन होवै मुकत शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एक सुन लिव लाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तथा सारना जानी तथा सारना जानी गुरु बज हो तथा सारना जानी तेही गुणी संस

कर कृपा प्रभ मिले। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज अज दे पावन ते पितर हुक्मनामे विच ये बख्शिश कर रहे हैं। आपां हर रोज ये अरदास करते हाँ, सच्चे पातशाह कृपा कर दिओ महाराज, अपने चरणों के नाल जोड़ के रखियो। हुण अज दे हुक्मनामे दे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी ने यह जुगत समझाई है कि पूरे गुरु किवें अपने चरणों के नाल जोड़नगे, की करना पएगा कि गुरु रहमत कर दें, कि हिरदा गुरु दे चरणों नाल जुड़ जाए। कुछ ना कुछ तो करना पएगा, इंज तो नहीं कुछ भी कि गुरु की खुशी विच ही गुरु दे चरणों नाल जुड़ना। हुण गुरु की खुशी किवें मिलदी है, तो जिहड़े हिरदे गुरु दे चरणों नाल जुड़ जाते हैं, जिन्हां ते गुरु रहमत कर लैंदे ने, अपने चरणों नाल जोड़ लैंदे ने, उन्हां दा जीवन किहो जिहा हो जाता है, नाल महाराज जी ने यह भी दस्सिया। और ये ढंग और तरीका भी दस दिता कि हे परमात्मा दे प्यारिओ, आ कर्म कर लिओ गुरु रहमत कर देणगे। जिवें जदों कोई प्राणी इस संसार नूं छड्ड के चले जांदा है ना, अरदास करदे आ सच्चे पातशाह विछड़ी होई रूह नूं चरणां विच निवास बख्शिश करे। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने, हे इंसान तूं जिउंदे जी गुरु दे चरणां नाल जुड़ जा, जदों सवास पूरे होणगे अगे जा के भी जो जुड़ी हुई आत्मा तो हमेशा ही मालक दे चरणों नाल ही जुड़ी रहती है। और अज के हुक्मनामे विच गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने यह जुगत समझा दिती है, और नाल ये भी दस दिता, गुरपुरै चरनी लाया, कि जेड़े हिरदयां नूं पूरे गुरु ने रहमत करके अप

0: राष्ट्रपति
1: जय प्रसाद सती अमर दिखाए तिस ठाकुर को रख मन माए
0: जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमत परम गत पावे
1: प्रसाद बसे सुख मंदिर जिसे ध्याए सदा मन अंदर
0: जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना
1: प्रसाद रंग रस भोग नानक
0: जे प्रसाद पाठ पटंबर हडावे तिसे त्याग कद अवर लभावे जे प्रसाद तू सब को मान मुख ताको जस रसन बकाना प्रभ जी जब दरगा मान पावे नानक पद सेती घर जावे जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत

0: अष्टपदी
1: साध का संग मिटा अभिमान साध का संग प्रगटा सुग्यान
0: साध का संग पाए नाम रतन साध का संग एक ऊपर जतन
1: साध का संग गोचर मिला साध का संग सदा पर फुला
0: साध संग होई सब की रीन साध का संग मनोहर बैन
1: साध का संग माया ते भिन्न साध संग नान प्रभ सो प्रसन्न
0: साध संग किस्यो नहीं बैर साध के संग ना बीगा पैर
1: साध के संग ना ही हो ताप साध के संग तजा सब आप
0: साध के संग ना कब होता वै साध के संग सदा सुख पावै
1: साध का संग बसै थान ऊचै साधु कै संग मैल पहुँचै
0: साध का संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान
1: साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ती सब को बरसावै
0: साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन
1: साध के संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल
0: साध के संग इहा उहा सुहेला साध संग बिछड़त हर मेला
1: पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक पुत्रा साध सुन रसै
0: साध का संग ना मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै
1: साध संग भई आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी
0: साध की महिमा वेद न जाने जेता सुने तेता बखियाने
2: गुण ते दूर साध की उपमा रही पर।